0: लोकलिंगीत,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैले ले जावना साथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।